एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की तिथि 29, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के सितंबर महीने की 20 तारीख प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। आज की सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों की साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का

करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एला विनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है।

भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर भरत जी दल बल समेत चित्रकूट की दिशा में चल पड़े हैं। राह में असंख्य जड़ चेतन जीव जिन्हें पहले श्री राम के दर्शन हुए थे अब भरत का साक्षात्कार पाकर मानो परम पद प्राप्त कर रहे हैं। किंतु भरत का प्रभाव देख देवराज इंद्र ये सोचने लगते हैं कि कहीं भ्रातृप्रेम के वशीभूत श्री राम अयोध्या न लौट जाएं और इस तरह पनी बनाई बात बिगड़ न जाए। उनकी चिंता देख देवगुरु बृहस्पति उन्हें सीख देते हैं कि श्री राम की भक्त वत्सलता और उदारता की महिमा को ध्यान में रखकर मन से इस प्रकार की कुटिलता निकाल देनी चाहिए। जो भी श्री राम के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है, और इस बात को दुर्वासा से अधिक और कौन जान सकता है।

समर्पण भक्ति संगीत के इस दैनिक कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे फिल्मों से लिए गए भक्ति संगीत का संकलन।

कार्यक्रम अभिवरण 7:45 बजे सुनिएगा सुगम संगीत, 7 बजे कार्यक्रम जोहार चाईवासा, 8 बजे समाचार प्रभात का प्रसारण होता है और 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज। साढ़े 8 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे, लोक संगीत का कार्यक्रम माटी की महक सुनिए 8:40 पर। आज का विविधा कार्यक्रम पूर्वान्ह 9 बजे, 9:30 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन होगा। उसके बाद फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम सुनिएगा 10 बजे, 10:30 बजे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा।

सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर कार्यक्रम विवरण। फौजी भाइयों का कार्यक्रम होगा जय भारती 5:05 पर। खेती गृहस्थी कार्यक्रम 5:30 और मुख्य समाचार 6:00। पर क्षेत्रीय भाषा में होगा हो अखड़ा 6:30 विविधा कार्यक्रम। 7:00 प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले में आजकल।

आपकी पसंद। ये कार्यक्रम होगा 7:15 बजे। 8 बजे फरमाइशी नगमों का हमारा दूसरा कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 बजे आप सुन सकते हैं समाचार संध्या। 9 बजे News@9 डेली कैप्सूल हाइलाइट्स बेस्ड ऑन 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026। ये जापान में होने वाले एशियन गेम्स पर आधारित ये कार्यक्रम होगा 10:00 से 10:20 तक। 10:20 पर गज़लों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 बजे सुरों के रंग। 11 बजे हिंदी समाचार। 11:05 पर इंग्लिश न्यूज़। और आज की सभा संपन्न होगी 11:11 पर। तो ये था आज का कार्यक्रम विवरण।

सुगम संगीत इस दैनिक कार्यक्रम में यह आ गया आज का कार्यक्रम जोहार चाईवासा। डिस्को डांसर इस फिल्म के लिए आवाज बप्पी लाहिड़ी।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: और आइए सुनते हैं देशभक्ति की भावना से लबरेज चंद गीत।
1: हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी
0: है। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये है इस फिल्म का शीर्षक गीत।

सदगति की राह वही जहाँ मन निर्मल हो जाए, सन्मार्ग की लौ जगे, अंधेरा खुद मिट जाए, कर्मों की धूल धोकर इंसान भीतर झांके, अपने ही अंतर मन से अपने सवाल मांगे।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चाईबासा, यह आकाशवाणी चाईबासा है। कुछ ही पलों में सुनेंगे समाचार प्रभात।

समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर

0: गए केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
2: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
3: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
4: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पड़ नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे ही जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमनमैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
3: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
5: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
3: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
1: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक तो मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है। तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है, उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
2: We have to continuously be watchful of the...
3: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
3: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डी गोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सेंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने ये चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंध

0: निकली अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिंदुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर ABVP और NSUI का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, ABVP ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनुभाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट पे ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी। ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1067 locations across the country today as part of 100 weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Keralam, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And now the news in detail. Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. More from our correspondent.
4: Biometric Aadhaar authentication ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. The Petroleum and Natural Gas Ministry said that the process is not meant to deny LPG to any genuine household, and every eligible consumer has several easy ways to complete it. It said 27.43 crore consumers have already completed authentication and do not need to do anything further. Authentication can be completed at the time of delivery, at the distributor's showroom, or an oil marketing company mobile app. The Petroleum and Natural Gas Ministry has urged consumers who have not yet completed biometric Aadhaar authentication to do that before 1st October 2026. With Suparna Saikia, Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
3: The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will witness a major nationwide youth mobilization today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across 1,067 locations in the country. It added that this program will be organized across 471 district My Bharat offices, along with 596 locations of partner organizations. The Samaroh will bring the campaign's message directly to young people through Nasha Mukt Pledge, signature campaign, thematic street plays, slogan writing, and youth-led discussions. Bharatiya Janata Party Punjab's Nasha Mukt Punjab Yatras, which the party national president Nitin Naveen launched from the border district of Pathankot on September 18, is getting a remarkable response from the people of the state. Yesterday, Delhi Chief Minister Rekha Gupta, while launching the second out of the four phases of the Yatras from Fatehgarh Sahib, termed it as a movement of a new beginning in Punjab. She said, Nasha Mukt Punjab Yatra is not merely a political program, but a call for collective action to free Punjab from drugs, crime and fear. More from our correspondent.
5: The 13-day long Nasha Mukt Punjab Yatra, which has started with a tagline of Bhajpa Da Nara, Nasha Mukana Sara, is focusing on three major challenges presently confronting Punjab. These are growing drug menace, deteriorating law and order, and corruption at every level of governance. The third Yatra will be launched today by Union Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal from Fazilka's Sadiki border, and tomorrow the fourth phase will be flagged off by Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan and Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini from Talwandi, Sabo and Bathinda. The Nasha Mukt Punjab Yatra will conclude in the presence of Union Home Minister Amit Shah on September 30th at Jalandhar. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
3: Prime Minister Narendra Modi has distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
6: बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्किल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है
3: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues today. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in this special series, Seva Sankalp Abhiyan, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the introduction of the Goods and Services Tax, or GST.
7: The GST was introduced in 2017 with the aim of consolidating a fragmented internal market divided by central and state taxes, cascading taxation and border check posts. 17 taxes and 13 cesses were brought under a common framework, making one nation, one tax, one market a practical reality. Before GST, interstate movement could involve repeated tax checks, paperwork and long waits. The

0: clear and unambiguous. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Telangana, Andaman and Nicobar Islands today. The Met Department has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Madhya Maharashtra, Orissa, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. On to sports now. In chess Olympiad, Indian men's team defeated Spain 3-1 with world champion D. Gukesh leading the way with a clean victory over former world championship challenger Alexei Shirov in Samarkand yesterday. Meanwhile, R. Pragyananda was held to a draw by David Anton Guijarro, while Nihal Sarin also settled for a draw against James Santos Latasa. In the women's section, India recorded a 3-1 victory over Mongolia. B. Savita Shree continued her impressive run with a fourth consecutive win, defeating seasoned player Bakuyag. The 20th Asian Games 2026 will see several Indian athletes begin their medal hunt across multiple disciplines today. In today's cricket event, Indian women team will face Bangladesh in the semi-final. The knockout match will start at 10:30 a.m. Indian time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Saira. ABVP sweeps 3 of 4 DUSU seats. NSUI rebel wins VP post, writes in the Sun Times. While the Sunday Tribune headlines, ABVP sweeps DUSU poll again. Independence VP post win stunts rivals. FTA skilling incentives opening new employment avenues for youth, says Prime Minister, writes Sunday Pioneer. The Hindu also quotes the Prime Minister in its headline, developing nations wrongly blamed for emissions. The Sunday Statesman reports, Bengal bipolar drama, Mamta's Reginagar candidate does U-turn after pull-out decision. The Asian Age headlines, India rejects new US tariffs pressure. And finally, Sunday Pioneer writes, end of an era, 1965 war hero Cook passes away. The legendary Indian Air Force fighter pilot, Flight Lieutenant Alfred Cook, played a crucial role in defending Kalaikunda in the 1965 Indo-Pak War and was awarded the Veer Chakra for the classic dogfight. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1,067 locations across the country today as part of 100-week Nasha Mukt Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andaman Nicobar. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
3: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
4: बुखार होने पर ओझागुनी के पास न जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: मौसी, सुबह सुबह आप यहाँ?
6: बहू पेट से है ना, तो भगवान से सब कुछ अच्छा करने की कामना करने आई थी।
5: ये तो खुशी की बात है, घर में पल रहा बच्चा और माँ स्वस्थ रहे, इसके लिए समय समय पर बहू की डॉक्टरी जांच बराबर करवाती रहना।
6: मैंने बहू का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में लिखवा दिया है, उसे समय समय पर जांच के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाती हूँ।
7: गर्भ के दौरान 4 बार अवश्य जांच कराएं।
6: गर्भावस्था के दौरान 100 आयरन की गोली और टीटी के इंजेक्शन अवश्य ले।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: माँ बनना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिन तक रोज ही दवा लूं?
10: बहू, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है।
11: अरे माँ छोड़ो भी, खाना खा तो रही है ठीक से रोज।
10: लो अब जनरेटर को क्या हुआ?
11: अरे माँ तेल खत्म हो गया है और क्या।
10: अच्छा, 2 कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म, और बहू का क्या, वो भी तो 2 जान संभाल रही है। बहू ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। चांस क्यों लेना।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
12: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत को लेकर 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज झारखंड समेत देश भर में 1067 स्थानों पर होगा राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने SIR के दौरान पहले से उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मतदाताओं की पात्रता जांच करने का दिया निर्देश। दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर रांची जिला प्रशासन की टीम ने की बैठक। उपायुक्त ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल होने के लिए झारखंड पुलिस के विशेष एंटी नक्सल बल झारखंड जगुआर की टीम आज गुजरात के लिए होगी रवाना। और राज्य की पूर्व मंत्री बिमला प्रधान का आज सिमडेगा के पैतृक गांव बगडाण में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में नशा मुक्त युवा अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों और NSS इकाइयों के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जन सेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल में लाया गया।
1: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
2: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
1: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
3: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
1: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 19 और 20 नवंबर को इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ELC2 का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सभी जिलों में ELC को पुनर्गठित और सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि SIR के दौरान सुनवाई में किसी विशेष अतिरिक्त दस्तावेज की मांग न की जाए, पहले से उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पात्रता जांच कर स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया जाए और फॉर्म 6 का समयबद्ध डिजिटाइजेशन हो। दुर्गा पूजा को लेकर रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय में विकास, अतिक्रमण, यातायात और विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सिटी SP पारस राणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान, मुख्य मार्गों से अनावश्यक कट्स हटाने, अतिक्रमण हटने के बाद दोबारा कब्जा रोकने के लिए निगरानी और सभी वार्डों में वेंडर मार्केट के लिए स्थान

चिन्हित करने के निर्देश दिए। रांची नगर निगम ने वार्ड 16 में पथलकुदवा रोड गुदरी चौक के पास निगम की लगभग 19 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की, जहां पूर्व में अवैध बूचड़खाना चल रहा था। निगम ने बताया कि इस जमीन पर सामुदायिक भवन और अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा विरोध के प्रयास के कारण विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है।

0: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@eirnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@eirnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। यूपीआई लेन देन में परिवर्तन पर गिरिडीह में सरकारी फैसले का स्वागत किया गया है। महिला व्यवसायी जसवीर सलूजा ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विरुद्ध कोई फैसला नहीं ले सकते हैं।
1: जो यूपीआई में चेंजेस किया गया, जो शुल्क लिया जा रहा है, वो हमारे जैसे कारोबारी छोटे स्केल में काम करने वालों के लिए या कस्टमर्स के लिए कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंफ्यूजन में ना रहे, टेंशन ना ले, इसके लिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बड़े स्केल में जिनका काम होता है उनके लिए है बहुत हल्का शुल्क।
0: वहीं व्यवसायी संदीप डांगेच ने कहा कि इस निर्णय से आम आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा।
2: सरकार जो है जो शुल्क लगाने वाली है उससे छोटे व्यापारी किसी तरह कोई नुकसान नहीं ये किया जाए। ये सारा बड़े व्यापारी का मर्चेंट जो काम करते हैं उनके लिए ही है और सरकार जब भी सोचते हैं वो जनता के हित के लिए ही सोचते हैं।
0: गुजरात के केवड़िया में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में झारखंड पुलिस के विशेष एंटी नक्सल बल झारखंड जगुआर का मार्चिंग दल भाग लेगा। बल के 200 पदाधिकारी और जवान राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसकी तैयारी के लिए पूरा दस्ता आज अहमदाबाद रवाना हो रहा है। धनबाद समाहरणालय में अनुसंधान में साइंटिफिक और आईटी विषयों पर 4 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। एसएसपी प्रभात कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण में डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों के संग्रह, डिजिटल फुटप्रिंट की पहचान और सुरक्षित तरीके से उसे संरक्षित करने की जानकारी दी जाएगी।
3: जो आईटी एक्ट से संबंधित कांडों का अनुसंधान करने के लिए अधिकृत उन सभी पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और इसका मकसद सिंपल है कि जो आईटी एक्ट में जो अनुसंधान करता है वो उसका क्वालिटी के साथ अनुसंधान करे जो अपराधियों को सजा दिलाने में मददगार साबित।
0: राज्य की पूर्व मंत्री विमला प्रधान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे सिमडेगा जिले के पाकरटांड प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव बगडांड में पालामाड़ा नदी तट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। राज्य के कई जिलों में आज से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं 23 सितंबर को रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने झारखंड उच्च न्यायालय में 3 नए जजों की नियुक्ति की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है झारखंड हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज, फिर भी 9 पद खाली। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के झारखंड उच्च न्यायालय की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और प्रभात खबर ने माध्यमिक आचार्य परीक्षा में सफल 102 अभ्यर्थियों के डिग्रियों की जांच की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत को लेकर 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज झारखंड समेत देश भर में 1067 स्थानों पर होगा राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने SIR के दौरान पहले से उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मतदाताओं की पात्रता जांच करने का दिया निर्देश।

0: दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर रांची जिला प्रशासन की टीम ने की बैठक, उपायुक्त ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल होने के लिए झारखंड पुलिस के विशेष एंटी नक्सल बल झारखंड जगुआर की टीम आज गुजरात के लिए होगी रवाना। और राज्य की पूर्व मंत्री विमला प्रधान का आज सिमडेगा के पैतृक गांव बगडाण में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अरे रंथु बेटा, अपनी गाड़ी हमेशा तैयार रखना। अब तुम्हारी भाभी के बच्चा होने का समय निकट आ गया है। इस बार उसे स्वास्थ्य केंद्र ही ले जाऊंगी।
2: घर में प्रसव होने से कई परेशानियां हो सकती हैं।
3: उचित देखरेख और स्वास्थ्य के लिए महिला का प्रसव
2: स्वास्थ्य केंद्र में ही कराएं।
3: गर्भ के दौरान बराबर जाँच कराते रहें।
2: हमेशा सही और ANM से संपर्क में रहें।
3: सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर सरकार BPL परिवार को
2: माँ बच्चे के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: देखिए सरपंच साहिबा, हमारा मकान का नया नक्शा ऐसा बनेगा कि पूरा गांव में नहीं होगा।
6: नक्शा तो ठीक है, पर इसमें शौचालय कहाँ है?
5: अरे उसकी क्या जरूरत, हम तो हमेशा खेत खलियान में जाते हैं।
6: क्या कहा? खुले में मल से खतरनाक कीटाणु फैलते हैं, फिर हमारे हाथ के माध्यम से खाने में आ जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। हमेशा साफ और पक्के शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी चाईबासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। लोक संगीत के कार्यक्रम माटी की महक में आज सुनिए ओ लोकगीत। कलाकार हैं कुलमती पाटपिंगवा और साथी।

माटी की महक। इस दैनिक कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे वो लोकगीत फूलमती पाटपिंगुआ और साथियों से।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी
1: पूर्वाह्न के ठीक 9 बज रहे हैं और प्रस्तुत है आज का कार्यक्रम विविधा। ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र और आज के विविधा कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ SB सिंह।

आज का विचार, पृथ्वी से अधिक वजनदार माता है, आकाश से भी अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, तिनके से अधिक कमजोर बनाने वाली चिंता है।

जीवन की सांझ आए तो मन में मलाल ना हो, पीछे मुड़ें तो अपने कर्मों पर सवाल ना हो। सिंह, यही दुआ।

कदम सन्मार्ग पर रहें, सदगति मिले। सदगति मिले तो ऐसे कि लोग दिल में याद रखें।

ये तो गनीमत है कि सांसों में अभी रब का नाम है, वरना इस फानी दुनिया में कहाँ किसका मुकाम है। जो मिला उसे शुक्र समझ, जो गया उसे जाने दे, हर जख्म के भीतर छुपा कोई पैगाम है। तूफानों से कह दे मुझे डरना नहीं आता, मेरे साथ मेरे मौला का खुला आसमान है। सिंह ने जब भी खुद को खुद से अलग किया, हर तरफ वही दिखा, वही मेरा मुकाम है।

उजालों की बातें बहुत हो चुकी, मगर हर तरफ अंधेरा कायम है। चरागों ने जलकर भी क्या पा लिया, हवाओं का फिर भी पहरा कायम है। उम्मीद का दीपक बुझा तो नहीं, अभी दिल में थोड़ा उजाला कायम है। सिंह, रात चाहे जितनी भी हो, यकीन रख कहीं तो सवेरा कायम है।

नाराजगी तो नहीं, फिर पर्दा सा क्यों? तेरे और मेरे बीच ये फासला सा क्यों? मैंने तो अपना सब कुछ तेरे नाम कर दिया, फिर भी दिल में कोई शिकवा सा क्यों?

मैंने तो दर्द को भी तेरी अमानत माना, फिर इस दर्द में इतनी शिकायत तो नहीं, तेरी खामोशी में तेरी आवाज लगती है, तेरा खिदमत सा है।

कम अर्फी ने आँखों पर कैसी धूल जमा दी, कम जरफी ने रिश्तों की हर राह भुला दी। इल्म था पास मगर समझ का उजाला न था, लफ्ज़ थे बहुत मगर

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं चाहूँगी कि आप अपना परिचय खुद दें।
1: मैं डॉक्टर विनीता तिरिया, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं फ़िलहाल पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी।
0: तो सबसे पहले तो ये बताइए अभी कि छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनको किस तरह की देखभाल की ज़रूरत होती है?
1: जी ज़रूर, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं वहाँ से एक पीडियाट्रिशियन का काम शुरू होता है, जैसे बच्चे को रिसीव करना, उसके बाद माँ के यहाँ अगर बच्चा स्वस्थ है तो माँ के यहाँ हम डायरेक्टली बच्चे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगर कोई बीमारी हो तो उनको नीकू में ट्रांसफ़र करते हैं जो होता है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। आज हम बात करेंगे नॉर्मल बच्चों के बारे में, ठीक है। डिलीवरी होने के बाद बच्चा हुआ, उसके बाद अगर बच्चा सब रिसेसिटेटिव मेजर्स लगा, नॉर्मल उसको जैसे प्रोसेस रहता है वो करने के बाद अगर माँ के पास हम भेज देते हैं, वो वहाँ उस बारे में हम बात करेंगे कि बच्चे का क्या केयर करना है। बच्चे को गर्म रखना है, एक दो दो घंटे में दूध पिलाना है, वहाँ माँ का दूध पिलाना है। अगर सीजेरियन रहता है तो जैसे माँ का दूध थोड़ा कम रहता है, जैसे मिल्क सिक्रीशन में थोड़ा टाइम लगता है, एक दो दिन बाद होता है, तो बच्चे को फॉर्मूला फीड देना है। तो वो डॉक्टर से आपको बताएंगे कैसे दो दो घंटे में कैसे बनाना है, वो दूध की प्रक्रिया अलग है। तो गर्म रखना भी एक है कि उसका सिर में टोपी रहना चाहिए, हाथ के मोजे पैर के मोजे पहनाना है और उसको लपेट के रखना है बच्चे,
0: मतलब कोई भी मौसम हो
1: लपेट के रखना है। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लपेटना है, दो तीन कपड़े से लपेटना है, जो टेम्परेचर पे आप रह सकते हैं बच्चा भी वो टेम्परेचर पे रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली बच्चों को पंखा के नीचे नहीं सुलाना है, डायरेक्टली एसी के नीचे नहीं सुलाना है, तो बच्चों को ठंड लग सकती है, ठीक है। फिर ये हुई पहली बात जो टेम्परेचर के बारे में। दूसरा जो मैंने बोला फीडिंग करना है, उसको दो दो घंटे में फीडिंग करना है। सीजेरियन के बाद भी आजकल ऐसा हो गया है कि तुरंत फीडिंग पे आप लगा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: ठीक है, अब वो तो नई चीज़ें हो गई हैं। और नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो तुरंत पिला देना है, तुरंत दूध पिलाना है, और ध्यान रखना है कि दो दो घंटे या दो से तीन घंटे मैक्सिमम आपको दूध पिलाना ही है बच्चों को, नहीं तो क्या होता है शुगर की कमी हो जाती है। अच्छा। तो उसकी वजह से झटके जैसे हो सकते हैं, अकड़न जो बोलते हैं वो सब हो सकता है, बीमारी वो है। उसके बाद बच्चे को ध्यान रखना है कि बच्चा पेशाब किया कि नहीं किया। नॉर्मली कैसे बच्चे जो पेशाब करते हैं 48 आवर्स ऑफ बर्थ, मतलब 48 घंटे में पेशाब कर लेना चाहिए और 24 घंटे में एक बार पैखाना कर लेना चाहिए बच्चे। अच्छा, को इनकेस नहीं होता है तो अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना है अपने को, ठीक है। तो फिर चौथी बात हो गई कि उसको ज़्यादा छूना नहीं है बच्चे को, जैसे बहुत लोग आते हैं मिलने आते हैं, किस करते हैं तो किसिंग से कैसे गोदी करते हैं, तो बच्चों को आइडियली तो स्टेरिलियम रहता है जो नीला पानी रहता है, दो बार पंप करके उसको निकाल के ही छूना है बच्चों को, नाखून काट के रखना है अपना, तो वो एक बात है। और बच्चों को ज़्यादा छूने तो देना ही नहीं है, बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, वो मतलब मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चों को इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं अभी फिलहाल बेसिक।
0: तो ये छोटे बच्चों को जैसे कि कपड़े से लपेट के रखना चाहिए, हाँ। किस तरह के कपड़े होना चाहिए?
1: सूती के कपड़े, सूती के कपड़े। कुछ कुछ बहुत सारे आते हैं वो बहुत चमकीले कपड़े, सिल्क के कपड़े से ऐसे लपेटते, तो वैसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हो गया बात नहलाना कब है बच्चों को, नहलाना जब जब नाल निकलता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं हम लोग, उसके बाद ही नहलाना चाहिए बच्चों को, 5-7 दिन में निकल जाता है वो।
0: अच्छा, तब तक नहीं नहलाना चाहिए।
1: उसके बाद स्पंजिंग कर सकते हैं, स्पंजिंग बोले तो थोड़ा गुनगुना पानी लेके कॉटन का एक रुमाल लेके तो पूरे बच्चे को पोंछ लीजिए आप। अच्छा, ऐसा है।
0: अच्छा, हमारे क्षेत्र में देखा जाता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा तेल मालिश की जाती है, तो क्या तेल मालिश होनी चाहिए?
1: तेल मालिश बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो मालिश का प्रोसेस है, जैसे पहले के ज़माने में कैसे थे बच्चों को बिल्कुल दबा दबा के लटका लटका के जो मालिश करते, सिर पे लटका दे, सिर पे पकड़ के घुमा रहे हैं, पैर से लटका रहे हैं उल्टा, वो सब तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कैसे ब्रेन में जो ब्लीडिंग का चांस होता है, रक्त स्राव जो होता है वो हो सकता है चांस, प्लस उसके जॉइंट्स वगैरह जो बच्चों के रहते हैं बहुत नाजुक रहते हैं, फिर उनका इधर उधर हिल जाना वैसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बच्चों को मालिश करना है बिल्कुल नहाने के पहले, नॉर्मल जैसे प्रचलन है सरसों का तेल वगैरह, तो आज के ज़माने में जो प्रचलन पहले था वो सब तो आजकल नहीं करना चाहिए आइडियली, तो जो रिकमेंडेड है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ये कोकोनट ऑयल, नारियल का जो तेल रहता है अपना, सिंपल पैराशूट ऑयल या कोई भी कोकोनट ऑयल आप लेते हैं बाजार से, उससे हल्के हाथों से मालिश करना है बच्चों को, और तालू पे जो एंटीरियर फंटनेल रहता है, जो अपने सिर का जो ये सॉफ्ट भाग रहता है, तो उसमें तो तेल लगाना नहीं है, क्योंकि वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और उसका खुला रखना बहुत ज़रूरी है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो मान्यता है कि वो लगाएंगे लगाएंगे तो बंद हो जाएगा, तो उसको लगाना ही नहीं है। कान में तेल, नाक में तेल, फिर नाभि में तेल।

0: जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं बच्चों के, वहाँ भी तेल वगैरह कुछ लगाना ही नहीं है, वहाँ पे ऐसा है
1: अच्छा
0: हल्के हाथों से बच्चों का मसाज करना है सेंसरी स्टिम्युलेशन के लिए। ऐसे मसाज करने से बच्चों के हड्डी बहुत मजबूत हो जाएंगे, ऐसे
1: इस
0: प्रचलन
1: तरह
0: है
1: का
0: वैसा
1: प्रचलन
0: तो
1: है।
0: वैसा नहीं है, तो बिल्कुल हल्के नरम हाथों से मसाज करना है।
1: अच्छा, तो क्योंकि बच्चे जो हैं ये माँ से फीडिंग करते हैं ना, तो माँ का भी देखभाल होना चाहिए, उसको भी खान
0: बिल्कुल
1: पान
0: बिल्कुल
1: में
0: बिल्कुल
1: ध्यान देने की ज़रूरत
0: माँ
1: होगी।
0: का देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि माँ अच्छी रहेगी तो बच्चा अच्छा रहेगा। तो माँ के लिए जो है अभी सब खाना पीना कर सकती है माँ, बस तेल मसाला थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन जैसे बहुत मान्यता रहती है साग नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं
1: तेल नहीं
0: खाना,
1: खाना,
0: हाँ तेल
1: मसाला
0: नहीं
1: नहीं,
0: खाना, वैसा कुछ नहीं है, सब खा सकते हैं।
1: या नॉन
0: बस
1: वेज
0: नॉन वेज भी
1: वगैरह
0: खा
1: नहीं।
0: सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, बस ये है बहुत स्पाइसी नहीं खाना है क्योंकि जो इंटेस्टाइन रहता है, जो आंतड़ी रहते हैं, वो प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं उसमें। तो फिर नॉर्मल खाना सब खा सकते हैं, बस तेल मसाला थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए कम करें, बाकी बाकी खाने में कुछ परहेज नहीं है। इनकेस माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो फिर सब खा सकते हैं। क्योंकि माँ का जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड करने में इतने कैलोरीज बर्न होते हैं, माँ अगर अच्छे से खाएगी नहीं तो बच्चे को फिर न्यूट्रिशन भी थोड़ा, दूध सिक्रेशन कम हो जाता है, मिल्क सिक्रेशन, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो माँ को बिल्कुल ज़्यादा और कैलोरी रिक्वायरमेंट हो जाता है, जो नॉर्मल खाने से रहता है उससे ज़्यादा ही भूख लगती है। एज अ मदर मैं भी बोलना चाहूँगी कि 2-3 घंटे में इतनी भूख लग जाती है, आप उसमें भी सब कैलोरीज कम करेंगे, जैसे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, क्योंकि जैसे खाने में क्या सब रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें रहने चाहिए। मान लो आप रोटी और लहसुन ही दे रहे हैं तो फिर न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता नहीं है, ऐसा है।
1: तो प्रायः बच्चों में किस तरह की बीमारियां होती है?
0: तो सबसे पहले जो बीमारी है ये बच्चों को ठंड, मतलब से जो मैंने पहले बोला आपको, बच्चों का जो केयर है उनको लपेट के रखना है, ठीक है, उसकी वजह से ठंड लग जाती है, उसकी वजह से भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, पूरे ठंड, बच्चे नीले पड़ जाते हैं, ठीक है। एक है नीला पड़ना, नीला पड़ने के 2 कारण है, या तो बच्चे को ठंड लग रही है, हाथ पैर बिल्कुल नीले पड़ जाएंगे, या तो अगर बच्चा नीला पड़ रहा है, दूध पीते पीते रुक रहा है, उसके पसीना आ रहा है उसके सिर में, तो वो होता है हृदय के प्रॉब्लम, दिल के प्रॉब्लम जो होते हैं वो एक होता है। तो ये सब जब प्रॉब्लम होता है तो आपको डायरेक्टली पीडियाट्रिशियन को आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आपको दिखाना चाहिए। फिर दूसरा प्रॉब्लम है ये पीला का प्रॉब्लम, जो जॉन्डिस बोलते हैं हम लोग, बच्चा पीला पड़ जाता है। तो ये भी 2 टाइप के रहते हैं जॉन्डिस, एक फिजियोलॉजिकल एक पैथोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जनरली इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो 24 घंटे के बाद होगा, बच्चा 1 दिन का हो गया उसके बाद उसको पीला होता है, वो नॉर्मल रहता है हर बच्चे के लिए, ठीक है, पीला थोड़ा बढ़ेगा बढ़ेगा, 5वें दिन के बाद पीला का जो मात्रा होता है वो कम होता है। इनकेस अगर गार्जियन को माँ बाप को लग रहा है पीला बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, वो कभी कभी कम हो जाता है, वो ब्लड टेस्ट करेंगे। इनकेस वो बहुत एक रेंज रहता है जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए फोटोथेरेपी नामक ट्रीटमेंट होती है जिसमें लाइट के नीचे बच्चों को रखा रहता है, रखाया जाता है। और जो दूसरा पीला है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, वो 24 घंटे के अंदर होता है, तो उसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत सीरियस कंडीशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बीमारियां हैं, जैसे मैंने बोला बच्चों को ज़्यादा छूने से सेप्सिस रहता है, जो इन्फेक्शन के रेट रहते हैं वो बच्चों को हो सकता है इन्फेक्शन, जैसे अपन जैसे सर्दी है खांसी है बच्चों को छू लिया तो वायरल इन्फेक्शन जो अपने से आए हैं वो बच्चों में भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर जो अपने प्रचलन है, जैसे बहुत जगहों में ऐसा होता है नाभि में हल्दी लगा लेते हैं, हाँ कुमकुम लगा देते हैं, सिंदूर लगा देते हैं, कुछ वो निकल जाए वो सूख जाए, उसके लिए वो भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि अम्बिलिकल सेप्सिस नाम की चीज़ होती है और बच्चों में सेप्सिस जो और इन्फेक्शन का रेट इतना ज़्यादा है, जैसे अपने को बुखार होता है तो नई दवाई खाए तो भी चलता है, लेकिन उनका जो इन्फेक्शन होता है पूरे शरीर में ही फैल जाता है। और फिर उसके लिए उनको, जैसे नवजात बच्चों हैं उनको हम घर पर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उनके लिए मतलब जो नीकू होता है वहीं पे जाकर ट्रीटमेंट होता है, ब्लड टेस्ट करते हैं उसके लिए, उनको अगर इन्फेक्शन कुछ आता है उसमें तो उनको IV एंटीबायोटिक्स देते हैं, मतलब तो सुई लगा के इंजेक्शन देना पड़ता है, तो फिर इन्फेक्शन अगर नवजात बच्चों में होता है तो बहुत सीरियस है। फिर इनकेस और एक जो है, जैसे बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा बहुत सुस्त है, 2-2 घंटे में दूध पी रहा है, पी नहीं रहा है, बच्चा ले ही नहीं रहा है मुंह में बिल्कुल भी, दूध माँ पिला रही है, तो वो भी एक जो इन्फेक्शन का संकेत है, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। फिर और एक है जैसे बच्चा बिल्कुल अजीब से आंखें कर रहा है ऊपर, हाँ फिर हाथ पैर टेढ़े कर रहा है, तो वो भी एक रिस्क है कि आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो हो सकता है वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कि जो इन्फेक्शन बच्चे में गया है वो दिमाग में चला गया हो। कभी कभी कैल्शियम की कमी की वजह से जो बच्चे 9 महीने के पहले जन्म लेते हैं जिनको प्रीटर्म बेबीज बोलते हैं हम लोग, तो उन

0: भी कैल्शियम की वजह से हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी को वो समझ में नहीं आएगा, तो डॉक्टर के पास जाए वो बेहतर रहेगा वो. फिर जो प्रॉब्लम है और बीमारी नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे बच्चा को मैंने बताया 48 घंटे के अंदर उसको पेशाब कर लेना इन केस वो नहीं किया पेशाब, और 24 घंटे के अंदर उसने पैखाना भी नहीं किया, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं. वो क्या नॉर्मल आदमी को समझता नहीं है, वो भी आपको कंसल्ट करना पड़ेगा पीडियाट्रिशियन को एक.
1: तो जब बच्चे बीमार होते हैं इस तरह का प्रॉब्लम होता है उस समय माँ को फिटिंग कराना चाहिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे माँ अगर माँ को भी अगर इन्फेक्शन हुआ है, जैसे मान लो माँ को बुखार है, तो बहुत जगह मान्यता ये है कि माँ से बच्चे को दूध नहीं देंगे, माँ से बच्चे को बुखार हो जाएगा. और बच्चा भी अगर बीमार है, जैसे मान लो बच्चे को कुछ इन्फेक्शन आया है, जैसे CBC CRP जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें इन्फेक्शन कुछ आया, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो अगर उन इस केस में जो बच्चे को हम लोग नीको में एडमिट करते हैं तो देखते हैं, फिर नली से दूध देते हैं जो रायल्स ट्यूब फीडिंग बोलते हैं. इन केस बच्चा अगर इम्प्रूव कर रहा होता है, बच्चे में इन्फेक्शन है, अगर वो अच्छे से सक कर रहा है, तो फिर उसको दूध देते हैं माँ का दूध.
1: और अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम है कि माँ का दूध नहीं आ रहा है.
0: माँ का दूध नहीं आ रहा है उसके बहुत कारण है, क्योंकि पहला ये है कि एक मेंटल स्टेटस माँ का जो होता है डिलीवरी के बाद, माँ खुद इतनी थकी रहती है, हाँ, तो उसकी वजह से बाकी जगह ऐसा हो जाता है कि मतलब सीजर में जैसे मैंने बोला 2-3 दिन बाद ही मिल्क आता है, नॉर्मल डिलीवरी में तुरंत आ जाते हैं. प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उसका माँ का निप्पल का प्रॉब्लम, जो निप्पल होता है वो थोड़ा निकल के आना चाहिए, जैसे रिट्रैक्टेड निप्पल बोलते हैं, निप्पल बहुत ही अंदर है, जो निप्पल का जो भाग है वो आया ही नहीं है, बच्चा किसको खींचेगा, ये एक प्रॉब्लम है रिट्रैक्टेड निप्पल. जैसे हम राउंड्स वगैरह में जाते हैं तो ये बहुत ही आम बात है, वो बताते ही नहीं, वो बोलेंगे मैडम बच्चा दूध पी नहीं रहा है, दूध पी नहीं रहा है, लेकिन बच्चा क्यों दूध नहीं पी रहा, वो बहुत जरूरत है देखने के लिए. रिट्रैक्टेड निप्पल, फिर होता है इन्वर्टेड निप्पल, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है. तो निप्पल अगर अच्छे से बाहर आएगा तो बच्चा शक करेगा, फिर भी इनकेस बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो मतलब मान लो बच्चे को इन्फेक्शन है, तो रिट्रैक्टेड निप्पल्स के लिए है, अब डॉक्टर को दिखाइए वो, क्योंकि सिरिंज आते हैं उसे लगा के बताते हैं, नर्सेस बताते हैं, उसे खींच के फिर ट्राई करते हैं कैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए. ऐसा है क्योंकि माँ दूध अगर पिलाएगी नहीं, दूध का सिक्रेशन तो होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, तो कैसे हो जाता है, फिर ब्रेस्ट में दूध इतना भर जाता है तो फिर वो बहुत दर्दनायक होता है, क्योंकि फिर उसको निकालना ही पड़ेगा कैसे भी करके, अगर नहीं होता है तो फिर इन्फेक्शन ब्रेस्ट में भी हो सकता है, ऐसा हो जाता है, फिर बहुत दर्दनायक होता है फिर वो.
1: और जिस माँ का दूध नहीं आता है
0: बिल्कुल भी नहीं
1: होता है, तो ऐसे स्थिति में बच्चे को क्या आहार देना चाहिए.
0: आइडियली कैसा है, माँ को दूध आता ही है क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो तो चालू करते हैं अपना काम, वो चालू ही रहता है, वो बंद नहीं होता है. इनकेस होता है, कभी कभी हो सकता है माँ को दूध नहीं आ रहा है, जैसे मान लो सीजेरियन सेक्शन के मदर होती है तो उनको 2-3 दिन बाद ही आता है, तो उसके बाद आप फार्मूला फीड दे सकते हैं, लेकिन आइडियली रिकमेंडेशन फर्स्ट फार्मूला फीड नहीं है. माँ का जो दूध अगर आ रहा है, थोड़ा भी आ रहा है, जैसे होता है ना जो कोलेस्ट्रम बोलते हैं हम लोग, इनिशियल ब्रेस्ट मिल्क जो आता है वो पीला गाढ़ा दूध जो होता है वो बहुत ज़रूरत है देने के लिए बच्चों को, क्योंकि वो भी बहुत जगह वो भी मान्यताएं हैं कि वो उसको नहीं देना है, उसको फेंक देना है, जबकि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, वो तो देना ही है. और थोड़ा थोड़ा जैसे आ रहा है दूध, तो एकदम से जैसे सिजेरियन मदर होती है एकदम से आएगा नहीं, तो बच्चे को अगर आप छाती पे लगाएंगे बच्चा सक करेगा सक करेगा, तो जो एक साइकिल रहता है स्टिमुलेशन का ब्रेन को दूध बनाने के लिए, तो फिर वो साइकिल कंप्लीट होगा तो दूध आने लगेगा, आने लगेगा. और ऐसा कभी नहीं होता है कि दूध बिल्कुल नहीं है. बहुत माओं को प्रॉब्लम रहती है कि मैं दूध पिला रही हूँ बच्चों को और मुझे लग रहा है कि बच्चे को मेरा दूध कम पड़ रहा है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है OPDs का. तो इस बारे में बताना चाहूँगी कि ऐसे अगर आपका बच्चा दूध पी रहा है, आप 2-2 घंटे में 3-3 घंटे में दूध पिला रही हैं, बच्चा 6-8 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है, हाँ, बच्चा सो रहा है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, तो आपका दूध बिल्कुल अच्छे मात्रा में है. ये जो माँ का दूध जो अभी आइडियली रिकमेंडेशन है WHO के थ्रू, 6 मंथ तो कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग है.
1: अच्छा,
0: 6 मंथ कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग है,
1: तब तक कुछ भी नहीं देना,
0: तब तक कुछ भी जरूरत ही नहीं है. अच्छा, कुछ जरूरत ही नहीं, जो सारे रिक्वायरमेंट्स है माँ के दूध में हो जाता है, जैसे बहुत जगह प्रथाएं हैं गुट्टी देना वो सब बिल्कुल भी नहीं देना है, पानी देना, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क तो ऑलमोस्ट 95% पानी है, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फिर जो इम्यूनोग्लोबुलिंस रहते हैं इम्यूनिटी के लिए जो माँ से बच्चे को जाते हैं, तो ऑलमोस्ट सब रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है ब्रेस्ट मिल्क, तो ऊपर से कुछ देने की जरूरत नहीं है. एक बार बच्चा 6 महीने का

0: हो जाता है, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं जिसको
1: अच्छा।
0: कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। हाँ
1: और ये जो माँ स्तनपान करवाएगी उस समय बच्चे को कोई खास तरह से लेने की ज़रूरत है क्या? किस तरह, किस पोजीशन में उसको रखना चाहिए कि
0: बिल्कुल
1: अच्छा हो?
0: बिल्कुल, जो ऐसे माँ स्तनपान करा रही है तो सबसे पहले माँ का पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ को खुद बैक रेस्ट लेके अपने पीठ के पीछे पिल्लू लेके बैठना है, ठीक है। माँ कंफर्टेबल रहेगी तभी वो बच्चे को पिला पाएगी। फिर उसके बाद बच्चे को भी लेना है तो पिल्लू के ऊपर रख सकती हैं, फिर खुद बैठ बच्चे के ऊपर जो है झुक के मम्मा को नहीं पिलाना है कभी भी दूध। तो फिर जो बच्चा का जो पेट है वो मम्मा के पेट को टच करना चाहिए, बच्चा का फेस मदर के साइड फेस होना चाहिए, उसके बाद उनको पिलाना चाहिए। क्योंकि इसके पोजीशंस रहते हैं, अभी तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको तो इस वजह से तो बता सक दिखाना रहता तो मैं आपको और बेटर इमेजेस दिखा सकती। हाँ फिर वो है कि बच्चे जो माँ का निप्पल चूसते हैं तो ऊपर का भाग ही दिखना चाहिए, हाफ मून रहता है।
1: अच्छा
0: हाँ और चीक्स उनके फुल रहने चाहिए ऐसे। और जो लोअर लिप रहता है जो नीचे भाग है अपने होंठ का वो बाहर रहना चाहिए, लिप इवर्टेड बोलते हैं हम लोग वैसे, वो पोजीशन बेस्ट है।
1: अच्छा
0: हाँ ये अटैचमेंट बोलते हैं, जैसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे सिस्टर के पास जाएंगे तो ये सब चीज़ें वो देखते हैं, इनकेस आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं नहीं करा पा रही हूँ तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए जहाँ पे आपकी डिलीवरी हुई है, तो वहाँ के सिस्टर्स को आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर्स को पूछ सकते हैं मेरे से क्या चूक है, वो आपको बता देंगे।
1: अच्छा, ये तो हुई बच्चे की देखभाल। माँ को किस तरह की देखभाल की ज़रूरत होती है ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई परेशानी ना हो?
0: माँ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिलीवरी के बाद कैसे बहुत अलग सा जीवन हो जाता है। एक माँ जन्म लेती है, पहले वो औरत होती है, पहले बच्ची थी फिर औरत हुई, एक माँ का भी जन्म होता है बच्चे के साथ, तो माँ को भी एक नई जो माँ है तो उसको भी कुछ मालूम नहीं रहता है, जो पुराने प्रचलन है जो उसकी सास ने बोला जो उसकी माँ ने बोला वो वही करते हैं। आजकल का ज़माना अच्छा इस सेंस में है कि डॉक्टर्स आपको सब बताते हैं, और ये माध्यम से न्यूज़पेपर हुआ, रेडियो हुआ, टीवी हुआ, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गया है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है माँ का ध्यान रखना है, तो जैसे बच्चा घर में आता है सब बच्चे की तरफ देते हैं, अरे मेरा ये हुआ है, पोता हुआ है, नाता हुआ है, जो भी हुआ है, तो वो बच्चे की तरफ ध्यान देते, माँ की तरफ कोई ध्यान नहीं देता।
1: कोई
0: जबकि
1: ध्यान नहीं देते।
0: माँ को ही भी इतने ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत ही जितना बच्चे को ज़रूरत है। तो माँ का खान पान सबसे पहले उस पर ध्यान देना है, मदर का रेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि रात भर बच्चे सोते नहीं हैं, बच्चे को रात को पिलाते रहना है, तो घर वालों का ये कर्तव्य होता है कि माँ को थोड़ा सोने का भी टाइम दे, क्योंकि रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता ही है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो सिजेरियन हो, क्योंकि नए माँ है उसको खुद मालूम नहीं बच्चे को कैसे पकड़ना है, बच्चे को क्या करना है, तो आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनकेस पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक होता है जो माँ बिल्कुल मतलब जो साइकिक होता है जो साइकोलॉजी होता है माँ का बिल्कुल बदल जाता है, बच्चा रो रहा है रात में कोई उसको हेल्प नहीं कर रहा है, उसको भूख लगी कोई उसको खाना नहीं दे रहा है, तो ये सब की वजह से माँ पे भी बहुत असर पड़ता है दिमागी तौर पर, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती है मदर्स बहुत सारी, उनको समझ ही नहीं आता क्या करना है नहीं करना है, बिल्कुल अलग ही दुनिया में चली जाती है, तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, इट्स रियल। मैं भी माँ बनी हूँ 2 टाइम तो मुझे भी मालूम है इट्स रियल, और उस चीज़ के बातें होनी चाहिए आज के ज़माने में। तो अगर घर में आपको सपोर्ट है तो आप मदद मांगिए, मेरे से नहीं हो रहा है आप बच्चा पकड़िए थोड़ी देर, ऐसा आप माँ बन के ऐसा मत सोचिए कि मैं सब कर लूंगी, आप नहीं कर सकते हैं। और जो लोग हैं आजकल के फादर्स तो खैर बहुत अच्छे हो गए हैं तो वो भी हेल्प करते हैं, जैसे आपके सास हुए, घर में कोई हेल्प हुआ, बच्चे हैं मतलब बड़े कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं, आप दूध पिला दीजिए उनको, दे दीजिए बर्पिंग करने के लिए। और एक बात है कि बर्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्पिंग जो डकार निकालना बोलते हैं हम लोग, जैसे ब्रेस्ट फीड करती है मदर उसके बारे भी मैं बोलना चाहूँगी, तो 15 से 20 मिनट आपको एक छाती पे लगाना है बच्चे को, बच्चा इनकेस आपको लगे, नॉर्मली बच्चे पेट भर जाता है सो जाते हैं, उसके बाद आपको कंधे पे लेना है बच्चे को, फिर थोड़ा हल्के हाथों से थपथपाना है, आइडियली 10-15 मिनट रखना है, तो उसके बाद बच्चा डकार निकालता है, इनकेस
1: अच्छा
0: नहीं भी निकालता है तो भी आपको उसको खड़ा रखना है,
1: खड़ा
0: क्योंकि
1: रखना।
0: जैसे आप बच्चे को तुरंत दूध पिला के सुला देंगे तो फिर वो उल्टी कर देगा, तो उल्टी करने का ये रिस्क है, कभी कभी बाहर उल्टी करता है बच्चा, नाक से मुंह से निकलने लगेगा दूध, या तो ऐसे हो सकता है कि जो अपनी श्वास नली है और जो खाने की नली है बिल्कुल बाजू बाजू रहती है, तो जो खाने की नली से श्वास की नली में चला जाएगा तो उसको एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं, तो फिर उस केस में बच्चे को सांस की तकलीफ हो जाएगी तो आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, एक रिस्क वो रहता है। और ब्रेस्ट फीडिंग में और एक बात यह है कि जैसे आपने एक छाती से पिलाया, मान लो राइट ब्रेस्ट से पिलाया आपने, नेक्स्ट टाइम बच्चा 2 घंटे 2.5 घंटे में अपने आप रोने लगता है, या अगर नहीं रो रहा है तो आपको टाइमर लगाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए कि 2 घंटे में मुझे 2.5 घंटे में उठना ही है, और बच्चे को आपने राइट ब्रेस्ट से पिलाया तो नेक्स्ट आपको लेफ्ट

0: तरह से पिलाना है। अब एक ही पिलाएंगे तो फिर कैसे रहता है। और एक चीज़ है कि बच्चे को 15-20 मिनट हम क्यों बोलते हैं पिलाने के लिए, क्योंकि जैसा बच्चा रो रहा है मान लो, तो पहले छाती में जो मिल्क का जो ये रहता है, फोर मिल्क हैंड मिल्क, फोर मिल्क बोले तो जो मिल्क जो पहले आता है उससे बच्चे का बस प्यास बुझता है। उसके बाद जो आखिरी का मिल्क रहता है मान लो 10 मिनट के बाद का, उसमें रहेगा मिल्क जो थोड़ा वो उसका बच्चे का पेट भरेगा, जो पहला जो है प्यास और दूसरा जो पार्ट रहता है मिल्क का वो पेट भरेगा। तो बच्चा कैसे प्यास भी बुझ गया, पेट भी भर गया, तो सो जाता।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अविनीता तिरिया से ली गई भेंट वार्ता, विषय था शिशुओं की देखभाल।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांकेर रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444-99 या 1800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: श्रोताओं, इस संदेश के साथ ही समाप्त होता है आज का अभिविधा कार्यक्रम।

इस समय पूर्वान्ह के 9:30 बज रहे हैं। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम रस रंजन। इसमें सबसे पहले ये आवाज़ फिल्म दलाल के लिए।

जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है

0: 三哥，
1: फिल्म डॉन के बाद कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म दीवाना का ये नगमा।

सामीन, इस नगमे के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का रसरंजन कार्यक्रम।

पूर्वान्ह के ठीक 10 बज रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आगाज फिल्म शान के इस गाने से।

0: So easy.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिन पास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1-800-345-4060 पर।
3: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिन पास एवं झारखंड सरकार द्वारा में प्रसारित
5: द ग्रेट ग्रैम्बलर। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आशिक बनाया आपने, अब सुनते हैं इस फिल्म का शीर्षक गीत।

श्रोताओं, फिल्म बलमा के इस गीत के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। पूर्वान्ह के 10:30 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: नमस्कार। जापान के नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं कविता।
1: एंड आई एम दर्पण।
0: अब तक के भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय परफॉर्मेंस में 2 मेडल कंफर्म हो चुके हैं। पहली अपडेट में हमने आपको बताया था सुचिका तारियाल MMA सेमीफाइनल के मुकाबले में पहुंच गई हैं, जहां कम से कम उन्होंने अपने लिए एक कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है और दूसरा पदक ऑफिशियल तौर पर आया है शूटिंग रेंज से।
1: Yes, so that becomes the first official medal that has been confirmed. Of course, Suchika could go on to get into the final, could wield a silver or a bronze. But the first official medal has come from the shooting range, 10-meter air rifle women's team event, where the trio of Elavanil Valarivan, Sonam Maskar and Vidarsa Vinod have confirmed a silver medal, and India are off the mark on the medals tally. Let us also tell you that out of these three, 2 shooters have even made it to the final of the individual event, which means Elavanil Valarivan and Sonam Maskar will be in action in the final of the 10-meter air rifle women's individual event final at 11 a.m., which means we could have a couple more medals in the store.
0: और अभी मेडल की उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद स्विमिंग में भी हमारे पास एक मौका है मेडल अर्जित करने का। स्विमिंग में ऋषभ दास फाइनल में एंट्री कर चुके हैं, जहां 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ आज अपना फाइनल मुकाबला खेलेंगे और इसी के साथ इनके साथ रहेंगे रिजर्व में उत्कर्ष पाटिल, जिनका मुकाबला होगा दोपहर को 2:40 पर। उम्मीद है कि यहां ऋषभ का मेडल आ जाए।
1: Then talking about a medal, where we are thinking that a medal is assured, is cricket. Women's cricket is currently underway. The semi-final match has begun. India are facing off against Bangladesh. India have won the toss, decided to have a bat first, and currently as we speak at the Korogi Sports Park, the duo of Smriti Mandhana and Shefali Verma is on the park, and Smriti Mandhana is just 7 runs away from becoming the highest ever run getter in women's T20 internationals. Will they be able to? Will she be able to break that record? We will know soon. Earlier in the day, Sri Lanka defeated Pakistan and made it to the final. So if India wins this, they will be facing off against Sri Lanka in the finale.
0: बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां हमारी महिला जो टीम है उन्होंने एक शानदार आगाज दिया है। दर्पण ने बताया क्रिकेट के बारे में और यहां पर हम टीटी की बात कर रहे हैं, जहां पर विमेंस टीम इवेंट में ग्रुप एफ के मुकाबले में इन तीनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं। श्रीजा अकुला, दिया चिताले, यशस्वनी घोरपड़े ने यहां पर शानदार तरीके से एक तरफा अंदाज में जो आगाज दिया है टेबल टेनिस में, देखना होगा कि आगे का रास्ता कैसा रहता है।
1: Right, and the men's team is also in action in table tennis. India is facing off the same opponent, Indonesia, in the men's team event. Satyan Nanasekaran got us off to a great start by winning the first match, and then in a seesaw battle, Manav Thakkar was pushed to the limit, but he came out on the top as well. He won his match as well, and currently Manush Shah is playing in the third match. 5 matches in total in one fixture, and if you win 3 of

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 10:35 हो चुके हैं और इस वक्त हम खास आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जोहार रांची। स्वागत है, अभिनंदन है आपका आपके अपने प्रोग्राम जोहार रांची में। और आज इस प्रोग्राम के सफर में एक बार फिर आपकी हम सफर है आपकी दोस्त शिल्पी
1: और साथ में मैं ऋतुश्री। दोस्तों कहते हैं ना कि वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी साफ हो तो प्रतिबिंब साफ नजर आती है और वाणी मधुर हो तो व्यवहार नजर आता है।
0: तभी तो कहते हैं मन में केवल वही विचार बनाएं जो आप होते देखना चाहते हैं और वैसी ही वाणी बोलें जैसा आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि विचार एक बीज है और घटनाएं इसके फल। तो हम हमेशा अपने मन में अच्छे विचारों के बीज बोते चलें
1: और हमारे अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार और मधुर वाणी ही तो हैं जो दूर रहकर भी हमें नजदीकियों का एहसास कराती हैं।
0: इसी सुविचार के साथ चलते हैं आज के एक और जोहार रांची के सफर पर और कहते हैं
1: जोहार।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची और जोहार रांची में अब बातें आज के इतिहास की। तो आपको बताएं कि 20 सितंबर का दिन देश और दुनिया के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए दर्ज है, जिसमें सबसे पहले जिक्र करेंगे सन 1857 की, जब अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण किया और इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया।
1: सन 1878 में 20 सितंबर को ही प्रसिद्ध समाचार पत्र द हिंदू के साप्ताहिक संस्करण का प्रकाशन शुरू हुआ और सन 1932 में महात्मा गांधी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था के विरोध में पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया।
0: सन 1946 में आज ही के दिन पहले कान फिल्म महोत्सव की शुरुआत

0: फ्रांस में हुई और सन 1995 में संयुक्त राज्य महासभा का 50वां अधिवेशन प्रारंभ हुआ।
1: और ये भी बता दें शिल्पी कि सन 2009 में मराठी फिल्म हरिश्चंद्राची फैक्ट्री को 20 सितंबर को ही ऑस्कर अवार्ड्स की विदेशी फिल्म कैटेगरी में भारत की एंट्री के तौर पर चुना गया।
0: और सन 2006 में ब्रिटेन के रॉयल बोटानिक गार्डन्स के वैज्ञानिकों को 200 वर्ष पुराने बीज उगाने में कामयाबी मिली और बहरीन में विश्व कन्नड़ संस्कृति सम्मेलन का आयोजन हुआ। सन 2006 में ही 15 वर्षों बाद ब्रुसेल्स में भारत महोत्सव का आयोजन पुनः प्रारंभ हुआ। सन 2018 में आज के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और विश्व चैंपियन भारोत्तोलक मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
1: और सन 2012 में आज ही के दिन भारत की राजभाषा हिंदी दुनिया की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनी। बहुभाषी भारत के हिंदी भाषी राज्यों की आबादी 46 करोड़ से अधिक है। हमारे बॉलीवुड में भी कई ऐसे सुंदर गीतों की रचना हुई है जिसमें हिंदी भाषा की अत्यंत काव्यात्मक और संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग कानों से होता हुआ सीधा हृदय को स्पर्श करता है। और वैसे भी अभी हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं शिल्पी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा ही गीत सुने।

0: जो है रांची में अब उन मशहूर शख्सियतों की बातें जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सन 1897 में मराठी पत्रकार नाना साहब परुलेकर का जन्म हुआ और सन 1911 में भारतीय आध्यात्मिक नेता श्रीराम शर्मा आचार्य का जन्म हुआ था।
1: सन 1921 में पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक अजीत राम वर्मा का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। वे 17 वर्षों तक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL के निदेशक रहे।
0: सन 1942 में भारतीय क्रिकेटर राजेंद्र गोयल का जन्म हुआ था। इन्होंने एक गेंदबाज के रूप में अपनी खास पहचान बनाई थी।
1: सन 1924 में तेलुगु फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता ए नागेश्वर राव का जन्म हुआ। इन्हें कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2011 में पद्म विभूषण और 2090 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया।
0: ऋतु जी, इन्हें 1990 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान तो मिला ही, साथ ही साथ इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। सन 1957 में भारतीय फिल्म और टीवी कलाकार अनुपम श्याम ओझा का जन्म हुआ। हालांकि अनुपम श्याम ने दस्तक, दुश्मन, दिल से, संघर्ष, जख्म, लगान, हल्ला बोल और रक्तचरित जैसे कई फिल्मों में भूमिकाएं निभाई, लेकिन इन्हें असली सफलता मिली सन 2009 में आए टीवी सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा से, जिसमें उन्होंने ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाया था।
1: और सन 1856 में भारत के महान संत और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु का जन्म हुआ था और उन्हें मध्यकालीन भारत के एक विद्वान साहित्यकार और फारसी के प्रसिद्ध कवि फैजी का जन्म भी 20 सितंबर को ही सन 1547 ईस्वी को हुआ था।
0: और आज के दिन सन 1948 ईस्वी को भारतीय फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर महेश भट्ट का भी जन्म हुआ था। महेश भट्ट ने सन 1974 की फिल्म मंजिलें और भी हैं से फिल्म निर्देशन की शुरुआत की। इन्होंने अर्थ, सारांश, आशिकी, सड़क, दिल है कि मानता नहीं, जख्म जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई।
1: इनकी फिल्में तो बेहतरीन होती ही थीं, लेकिन उन फिल्मों के गीतों में एक ऐसी कशिश होती थी कि आज भी वो गीत सुनकर दिल के करीब हमें महसूस होता है। तो आइए सुनते हैं महेश भट्ट की फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना।

0: आज ही के दिन कुछ प्रसिद्ध हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा भी कहा। सन 1927 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद बरकतउल्लाह का निधन हुआ और सन 1928 में भारत के महान संत और समाज सुधारक नारायण गुरु का निधन हुआ।
1: सन 1933 में भारत में होम रूल लीग की संस्थापिका एनी बेसेंट का निधन हुआ। भारत की मिट्टी से गहरा लगाव रखने वाली प्रख्यात समाजसेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट ने कई मौकों पर अन्याय का कड़ा प्रतिरोध कर आयरन लेडी की छवि बनाई थी।
0: सन 1942 में भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ का निधन हुआ। कनकलता बरुआ एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में तिरंगा फहराते हुए शहादत पाई।
1: सन 1999 में तमिल सिनेमा की स्वप्न सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध अभिनेत्री राजकुमारी का निधन हुआ। उनकी फिल्म हरिदास 114 सप्ताह तक चेन्नई के सिनेमाघरों में चलती रही थी।
0: सन 2009 में हिंदी भाषा की लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कवयित्री, नारीवादी चिंतक और समाज सेविका प्रभा खेतान ने भी अंतिम सांसें ली। ये प्रभा खेतान फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा, फिगरेट नामक महिला स्वास्थ्य केंद्र की स्थापक, सन 1966 से 76 तक चमड़े और रेडीमेड कपड़ों की निर्यातक और अपनी कंपनी न्यू होराइजन लिमिटेड की प्रबंध निदेशिका भी रही हैं।
1: सन 2012 में आज ही के दिन रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार और निर्देशक दिनेश ठाकुर का भी निधन हुआ। दिनेश ठाकुर ने मेरे अपने, रजनीगंधा और घर जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया है। फिल्म रजनीगंधा के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था।
0: एक पटकथा लेखक और कहानी लेखक के रूप में 1978 की फिल्म घर की पटकथा और कहानी लिखने के लिए जाने जाते हैं ये, और जिसने उन्हें 1979 की फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी अवार्ड का खिताब दिलवाया।
1: सन 2017 में हिंदी सिनेमा के 50 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री शकीला का निधन हुआ। इनकी कई मशहूर फिल्में आईं जिनमें चाइनाटाउन, सीआईडी, दो बीघा जमीन, काली टोपी लाल रुमाल जैसे नाम शामिल हैं। शकीला को असली पहचान 1954 के

0: जोहार रांची में अब बातें आज मनाए जाने वाले विशेष दिन की। तो आपको बताएं कि आज यानी 20 सितंबर को पूरा देश मना रहा है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का स्थापना दिवस।
1: और वर्ष 1985 में आज ही के दिन आरपीएफ को भारत का एक सशस्त्र बल घोषित किया गया था। तब से लेकर आज तक चाहे आधी रात का वक्त हो, कड़कड़ाती ठंड हो, तूफानी बारिश हो या फिर तेज धूप, हमारी ट्रेनें और करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पर होती है।
0: आप जब किसी ट्रेन में सफर कर रहे होंगे या किसी रेलवे स्टेशन पर चाय की चुस्की ले रहे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा ना कि खाकी वर्दी में कुछ जांबाज चेहरे बड़ी मुस्तैदी से आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। जी हाँ, ये हैं आरपीएफ के जवान।
1: ये दिवस आरपीएफ के जवानों द्वारा रेल यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की रक्षा और देश सेवा में उनके समर्पण को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।
0: इस दौरान रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इकाइयों द्वारा जागरूकता अभियान, यात्री सुरक्षा संकल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।
1: ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के जरिए बिछड़े बच्चों को मिलाना हो या फिर ऑपरेशन अमानत के जरिए आपका खोया सामान आपको वापस दिलाना हो, आरपीएफ के जवान हमेशा कहते हैं, आप बेफिक्र सोइए, हम जाग रहे हैं।
0: हर स्टेशन पर सतर्क निगाहें, हर यात्री की सुरक्षा का संकल्प और हर चुनौती के सामने अडिग हौसला। आरपीएफ स्थापना दिवस हमें उन कर्मठ जवानों को सलाम करने का अवसर देता है जो अपने कर्तव्य को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सेवा मानते हैं।
1: रेल सिर्फ पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रेन नहीं बल्कि करोड़ों सपनों, उम्मीदों और मंजिलों को जोड़ने वाली जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा की सुरक्षा में दिन रात मुस्तैद रहते हैं रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के जवान।
0: आरपीएफ स्थापना दिवस पर देश के इन जांबाज प्रहरियों को सादर सलाम। कहते हैं सफर तभी खूबसूरत होता है जब सुरक्षा का भरोसा साथ हो, तो आइए आरपीएफ के साहस, सेवा और समर्पण को नमन करें और कहें, आप सजग हैं इसलिए करोड़ों यात्री बेफिक्र होकर अपने सफर पर निकलते हैं और रेल के मजे लेते हैं।

0: बल्कि लद्दाख की आत्मा अपने पूरे रंग में रंगी दिखाई देती है।
1: लद्दाख यानी ऊंचे पहाड़ों की धरती, बौद्ध संस्कृति की गहरी छाप, प्राचीन परंपराएं और बेहद समृद्ध लोक जीवन। हर वर्ष आयोजित होने वाले लद्दाख महोत्सव पर्यटकों और स्थानीय लोगों को लद्दाख की पारंपरिक संस्कृति से रूबरू कराते हैं।
0: यहाँ के पारंपरिक परिधान, लोक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और स्थानीय खान पान सब मिलकर इस उत्सव को खास बनाते हैं। और जब शुरू होता है पारंपरिक नृत्य तो रंग बिरंगे परिधान और मुखौटे जैसे कहानी कहने लगते हैं।
1: कहीं लोक कलाकार अपनी पारंपरिक धुनों पर थिरकते हैं तो कहीं हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद लद्दाख के जीवन शैली की झलक दिखाते हैं। यानी लद्दाख महोत्सव सिर्फ देखने का उत्सव नहीं है बल्कि महसूस करने का उत्सव है।
0: और शिल्पी ये हमें बताता है कि किसी जगह की खूबसूरती सिर्फ उसके पहाड़ों या प्राकृतिक दृश्यों में नहीं होती बल्कि वहाँ रहने वालों लोगों की परंपराओं, कला और संस्कृति की भी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने ऋतुश्री, और शायद यही लद्दाख की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ पहाड़ ऊंचे हैं लेकिन संस्कृति की जड़ें उससे भी गहरी हैं। तो अगर कभी लद्दाख जाएं तो सिर्फ पहाड़ों को कैमरे में कैद मत कीजिएगा, वहाँ की संस्कृति को भी अपने दिल में उतार कर लाइएगा।
0: लद्दाख महोत्सव हमें एक खूबसूरत संदेश देता है कि आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़िए लेकिन अपनी संस्कृति की डोर कभी मत छोड़िए।
1: बिल्कुल, क्योंकि संस्कृति ही वो रंग है ना ऋतुश्री, जो हम किसी भी जगह को सिर्फ स्थान नहीं रहने देता, उसे एक पहचान देता है। तो आइए इस बार लद्दाख को सिर्फ उसकी वादियों से नहीं, उसकी लोक परंपराओं और संस्कृति के रंगों से जाने।
0: लद्दाख जहाँ पहाड़ खामोश है लेकिन संस्कृति की आवाज सदियों से गूंज रही है। ये एक ऐसा उत्सव है जहाँ इतिहास वर्तमान से मिलता है, परंपरा आधुनिकता से मिलती है और हिमालय की धरती अपनी संस्कृति की कहानी खुद सुनाती है।

0: जोहार रांची में अब बातें मौसम के मिजाज की। तो आपको बताएं कि अंडमान निकोबार में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का झारखंड पर भी असर पड़ने की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है।
1: और मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे, कई स्थानों पर गर्जन और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है और कुछ इलाकों में बारिश होने की भी संभावना बताई गई है।
0: और मौसम विभाग के अनुसार ऋतुश्री ये बदलाव 8 से यानी 20 सितंबर से ही दिख सकता है। और अगर बात नहीं करें आज के तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
1: और 23 सितंबर को रांची समेत खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, कोडरमा, बोकारो और धनबाद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अन्य जिलों में भी बादल छाए रहने और वज्रपात की संभावना जताई गई है।
0: यानी बारिश के मजे के साथ साथ ऋतुश्री हमें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। जब वज्रपात होते हैं या बिजली चमकती है तो वैसे भी हम घर से बाहर
1: नहीं,
0: कम निकले,
1: कम निकले, हाँ, निकले हाँ। और अगर बाहर निकले हैं तो अपनी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर तो मौसम सुहाना ही है, बस हमें अपना ख्याल रखना है।
1: हाँ।

0: दोस्तों, बारिश कुछ लोगों के लिए बस एक मौसम होती है, लेकिन कुछ जगहों के लिए ये एक त्योहार है। और अगर आप बारिश को उसके सबसे खूबसूरत रूप में देखना चाहते हैं ना, तो चलिए भारत के उस राज्य में जिसे प्यार से कहा जाता है बादलों का घर, यानी मेघालय।
1: यहाँ बादल आसमान में नहीं, आपकी खिड़की के बाहर होते हैं। झरने केवल बहते नहीं हैं, गाते हैं, और प्रकृति हर पल एक नई कहानी सुनाती है। अगर कोई पूछे कि भारत में मानसून का सबसे खूबसूरत रूप देखने को कहाँ मिलता है, तो जवाब मिलेगा मेघालय।
0: इन दिनों यहाँ की हर पहाड़ी हरी मखमली चादर ओढ़ लेती है। बादलों की धुंध, अनगिनत झरने और बारिश से धुली हुई वादियाँ ऐसा मनोरम दृश्य रचती हैं कि हर मोड़ किसी खूबसूरत पोस्टकार्ड सा लगता है।
1: और मेघालय की एक अनोखी पहचान है शिल्पी लिविंग रूट ब्रिज। ये पुल सीमेंट या लोहे से नहीं, बल्कि रबर के पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर तैयार किया गया है, इसलिए इसे प्रकृति की अनोखी इंजीनियरिंग कहते हैं।
0: पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन ये पुल आज भी मजबूती से खड़े हैं। ये प्रकृति और इंसान के अद्भुत सहयोग की मिसाल है।
1: अगर आपको लगता है कि स्वच्छता सिर्फ एक अभियान है, तो मावली डोंग जाकर देखिए। यहाँ साफ सफाई लोगों की आदत है, जिम्मेदारी है और जीवन शैली भी।
0: यहाँ की हर गली, हर आंगन और हर मुस्कान यही संदेश देती है कि प्रकृति का सम्मान ही सबसे बड़ी सभ्यता है।
1: और मेघालय की संस्कृति उतनी ही रंगीन है जितनी इसकी प्रकृति। खासी, गारो और जयंतिया जनजातियों की परंपराएं, लोक संगीत, बांस से बने हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजन इस यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं।
0: कहते हैं सफर का असली आनंद तभी है जब रास्ते मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत हों, और मेघालय का हर रास्ता आपको प्रकृति के और करीब ले जाता है। सफर आसान हो इसके लिए रेनकोट और छाता जरूर साथ रखें।
1: और बारिश में फिसलन हो सकती है, इसलिए अच्छे ग्रिप वाले जूते पहने, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, झरनों और फिसलन वाली जगहों पर अतिरिक्त सावधानी बरतें, स्थानीय संस्कृति और प्रकृति का सम्मान करें।
0: तो अगर इन दिनों आप ऐसी मंजिल की तलाश में हैं जहां बारिश कविता बन जाए, बादल दोस्त बन जाए और हर झरना एक नया गीत सुनाए, तो मेघालय आपका इंतजार कर रहा है।

0: और चलते चलते आखिर में बस ये कहना चाहेंगे कि अल्फाजों के दीवाने तो बहुत मिलेंगे दोस्तों, तलाश उसकी करना जो खामोशी पढ़ ले।
1: इसलिए तो कहते हैं कि उसकी परवाह मत कीजिए जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह हमेशा उनकी करिए जिनका विश्वास आप पर

0: तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए।
1: इन्हीं बातों के साथ वक्त हो चला है जोहार राज्य के पन्नों को यहीं समेटने का। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ लेते हैं आपसे इजाजत और कहते हैं
0: जोहार।

मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो रहे हैं और ये वक्त है हमारे श्रोताओं के फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं इनकी पसंद। ये हैं बाबा वैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी, प्रतीक और प्रज्ञा, और इन्होंने सुनना चाहा है खामोशी द म्यूजिकल से अलका याग्निक और हरिहरन को। इस गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

आज नचले ये फिल्म का नाम, और आइए सुनते हैं इस फिल्म से राहत फतेह अली खान को। गीत के बोल लिखे हैं जयदीप साहनी ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं हमारे श्रोताओं के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। और अगली पसंद हमने ली है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरे दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा,

और जावेंद्र कुमार वर्मा की, और इन्होंने सुनना चाहा है अग्निपथ फिल्म से सोनू निगम को। गीत के बोल लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अजय अतुल ने।

अगली फरमाइश हमने ली है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाणकर राही, सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर और प्रिंस एकांश गवाणकर की, और इन्होंने सुनना चाहा है हम दिल दे चुके सनम से हरिहरन को। गीत के बोल लिखे हैं महबूब ने और धुन बनाई है इस्माइल दरबार ने।

दम लगा के हईशा, ये सुनते हैं इस फिल्म से मोनाली ठाकुर को। गीत के बोल लिखे हैं वरुण ग्रोवर ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने।

मोनाली ठाकुर के गाए इस गीत के साथ ही हमारे श्रोताओं के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बज चुके हैं और ये वक्त है बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ हैं महाजबीन और शिल्पी।

0: नमस्कार बहनों, लीजिए हम हाजिर हैं आपका बहुत ही खास कार्यक्रम गृह लक्ष्मी को लेकर। आज हम दो सखियां हैं, मैं महजबीन और साथ में है
1: शिल्पी। तो बहनों स्वीकार कीजिए हमारा भी नमस्कार, और हमें पता है कि जैसे आप हमारा इंतज़ार करती हैं वैसे हम भी आपका इंतज़ार करते हैं। और भला क्यों ना, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां रहती है, साथ में आपके लिए गीत। तो आइए हम करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत।
0: बहनों, महिलाएं दुनिया के हर एक काम को आसानी से कर लेती हैं, लेकिन जब बच्चों की परवरिश की बात होती है ना, तो यहाँ उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो भी आज के दौर में। बच्चों की परवरिश दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा काम है। हर माता पिता की ये उम्मीद और ये ख्वाहिश भी होती है कि उनका बच्चा शिक्षित, आत्मनिर्भर और संस्कारी हो।
1: बिल्कुल, यही ख्वाहिश हर माता पिता की होती है कि जब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अच्छी भविष्य का ख्वाब भी देखते हैं। आज माता पिता खुद भी व्यस्त जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हर घर में आज महिलाएं हैं वो कामकाजी हैं। तो बहनों, कहीं ना कहीं कामकाजी होने का ये होता है कि जब हम किसी कार्य में हम लग्न रहते हैं तो हमारे बच्चों का ख्याल थोड़ा सा रखने में माता पिता यानी कि माता और पिता दोनों की साझी जिम्मेवारी होती है।
0: और अगर ये शिल्पी, जैसे कि हम अगर बच्चों की सुरक्षा का भी सवाल करते हैं या इसका बारे में अगर सवाल उठता है कि आज के दौर में किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास नहीं करें। बहनों, इस समय जबकि हम बातें करते हैं अपनी तरक्की की, दुनिया में हम हर उन मुल्कों से तुलना कर रहे हैं कि जिस देश में हम नंबर वन है, यानी कि हर तरह से अच्छी बातें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे वारदात कभी कभी सुन करके मन खराब हो जाता है, जिनकी वजह से सब धरा का धरा रह जाता है। यानी कि हम अपने बच्चों को जब सबसे महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं, अगर कुछ जो सामाजिक तत्व हैं उनकी हरकत की वजह से हमें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा महजबीन, आज के समय में बच्चों को सब तरह की जानकारी देनी चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं। उनकी सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है कि हर माता पिता को हर उम्र के साथ उन्हें जानकारी दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बच्चों को यानी बेटे को बताएं, अपनी बेटी को यानी दोनों की परवरिश हम अगर एक समान करते हैं तो दोनों को अच्छे बुरे का भी पता चलना चाहिए।
0: और हाँ शिल्पी, वो प्यार, वो स्पर्श जिसे बच्चा असहज महसूस कर रहा है, हर माता पिता को इसकी सही जानकारी होनी चाहिए या होनी दे, बच्चों को भी चाहिए कि वो दे। आप उनसे तुरंत मना करें कि बच्चों को ये बताएं कि अगर इस तरह की कोई बातें होती है तो उन्हें मना करें। और हाँ, बिना उचित कारण के उनके आगे अगर वो उसे स्पर्श करते छूते हैं

0: तो फौरन उन्हें रोके, और अगर ऐसा कुछ बच्चों के साथ हुआ है तो माता पिता को इसकी जानकारी जो बच्चे हैं वो ज़रूर दें। अपने बच्चों से इस विषय पर खुलकर बातें करें कि बच्चों तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किस तरह की बातें हुई हैं।
1: बिल्कुल बहनों, अपने बच्चों को यह भी सिखाएं कि मेरा शरीर यानी बच्चों का शरीर अगर कोई स्पर्श करता है, किसी को छूने का अधिकार नहीं है, और अगर कोई जबरदस्ती करता है तो इसकी जानकारी अपने बड़ों को जरूर दें। बच्चों को हमेशा बताएं कि आप उनके साथ हैं, कोई भी गलत बात होती है स्कूल में, बस में या घर में, तो इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिम्मत कर आप उनसे पूछें और बच्चों को यह समझाएं कि आप उनकी हर बात के लिए उनका साथ देंगी। ये बात बहुत ही जरूरी है आज के समय में।
0: हाँ शिल्पी, देखो ना, जिस तरह से हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि माता पिता को समय पर इसकी भी जानकारी है, मतलब बच्चों से लेनी भी चाहिए कि बच्चे किस तरह से वो ठीक हैं, उनके साथ किसी तरह की गलत हरकत तो नहीं हुई है, उन्हें सावधान रहने के लिए कहें, उन्हें इस तरह से भीड़ वाली जगह पर जाने से रोकें, अगर भीड़ में बच्चों के साथ कुछ गलत हरकत हो रहे हैं तो उस पर बात करें, उन्हें सतर्क रहने के लिए कहें, और ये भी कहें खासकर लड़कियों में और लड़के के साथ साथ बच्चों में, मतलब लड़के में भी चाहिए कि उनके साथ जो गलत गुड टच और बैड टच होता है इस पर पूरी जानकारी दें कि किस जगह पे आप उन्हें मना कर सकते हैं कि आपको इस अंग पर हाथ नहीं रखना, कोई किसी भी गैर शख्स को यानी कि जिस व्यक्ति ने उसके साथ गलत किया है तो इस पर ना कहें, उसे रोके, उस पर उनसे गुस्सा करें कि आप मुझे इस तरह से ना छुएं,
1: यानी हर बात का विरोध करना जरूरी है। बहनों, ये बहुत ही जरूरी बात है जिसकी जानकारी अभी आपको मैसबिन ने बताई। हर अभिभावक को चाहिए कि अपने बच्चों को सावधान रहने को कहें समय पर। बहनों, अगर आप अपने बच्चों को खुलकर सभी बातें करेंगी तो निश्चित है कि आपसे वो कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपसे वो छुपाएंगी।
0: और बहनों, हम जब बच्चों की बात कर रहे हैं ना, तो बच्चों को बहुत सारी बातें हैं जो बतानी चाहिए कि आप किस तरह से किसी के नियत को पकड़ सकते हैं, किसी की गलत हरकत को, आप स्पर्श को पकड़ सकते हैं। बहुत सारी बातें जो छोटे बच्चों को, खासकर उन बच्चों को जो एक टॉफी के में ये हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, यानी कि उनको एक, हाँ अगर हम आम भाषा में कहें कि उनको एक लालच दिया जाता है कि बिस्किट का, टॉफी का, तो उस चीज़ से रोकें कि कोई भी अगर इंसान तुम्हें अनजान व्यक्ति दे रहे हैं तो उस पर आप रुके और उनसे बातें करें। और ये सारी बातें हैं जो अपने बच्चों को हमें सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ये सब सीख देनी चाहिए अपने दोनों, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ये सीख देनी चाहिए, हर माता पिता को सीख देनी चाहिए। तो ये थी बातें बहनों गुड टच और बैड टच की। तो अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत बच्चों से रिलेटेड।

0: नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स, काश एक चाबी होती।
5: एक चाबी है CKYC ID।
4: CKYC मतलब?
5: बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
4: वाह, RBI कहता है,
5: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
6: बहनों, फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आज हम तीसरी पीढ़ी के तहत बातें करेंगे हमारे जो बुजुर्ग हैं और उनके सम्मान। सखियों, जिस घर में बुजुर्गों की मुस्कान रहती है, उस घर में संस्कारों की पहचान रहती है। और घर की चौखट पर बैठा वो चेहरा, जो एक मासूम और एक मतलब इत्मीनान वाला चेहरा, जिसकी आंखों में बीते वर्षों की अनगिनत कहानियां होती हैं, जीवन के अनुभव के साथ हम उन्हें देखते हैं।
7: बिल्कुल बहनों, उनकी उंगली पकड़कर कभी हमने चलना सीखा, उनके कंधों पर खेला और कंधों पर बैठकर खिलौने खरीदने की मांग की, जिनकी सीख ने हमें जिंदगी की राह दिखाई। आज हम बात करेंगे उनकी, जो हमारे घर की तीसरी पीढ़ी है।
6: सखियों, यह उम्र का एक पड़ाव नहीं, बल्कि परिवार के अनुभव, संस्कार और स्मृतियों की धरोहर है। इसलिए बड़ों का सम्मान केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं,

0: सखियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आज हम आपको जानकारी देंगे गृह सज्जा के बारे में।
1: बिल्कुल, क्योंकि हम सखियों का काम है गृह सज्जा, और भाई हमारे कार्यक्रम का नाम भी है गृहलक्ष्मी, तो हम चाहे जितने भी व्यस्त क्यों न हो मेजबान, लेकिन अपने घर को सजाने में हम कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई सखियों को कुछ ऐसी जानकारियां दें, शायद उनको ऐसा कोई टिप्स हमारा पसंद आए। तो इसलिए आज हम बहनों के लिए लेके आए हैं गृह सज्जा। और कहते हैं बहनों के घर केवल ईंट पत्थरों से बनी दीवार नहीं, बल्कि हमारी भावना और यादों

0: का सुंदर बसेरा है हमारा ये संसार।
1: और घर की सज्जा उसमें अपनापन और खुशियों के रंग भर देती है, यानी कि वो खूबसूरती, वो सजावट उस घर को और दुगना खूबसूरत बना देती है। घर को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए महंगे जो जिस तरह से सामानों की हम सजावट करते हैं ना, उसमें अगर प्यार भी हो तो और खूबसूरती
0: बढ़ा
1: देती
0: है। बिल्कुल आपने सही कही। घर में साफ सफाई करीने से रखी चीजें, छोटे छोटे पौधे, सुंदर पर्दे, पुराने सामानों का रचनात्मक उपयोग भी घर को आकर्षक बना सकता है। मैजी भी कई बार ऐसा होता है ना कि घर में जरूरी नहीं है कि हम पर्दे को बार बार बदलें, लेकिन उसमें कोई छोटा पर्दा हम बीच में लगा देते हैं तो घर की खूबसूरती बढ़ जाती है। कोई भी ऐसा पुराना सामान है, बहुत दिनों से हमने उसे नहीं सजाया है, लेकिन आप जब उसको पॉलिश कराकर अगर रख देंगी तो वो आपकी चार चांद लगा देगा घर में।
1: इसलिए घर को सुंदर बनाने के लिए जिस तरह से हम बना सकते हैं इंडोर, और जिस तरह से जो पौधों की सजावट, अच्छे रंगों की चुनाव, दीवार पर परिवार के संग की यादों की तस्वीरें लगाइए, और अपने या अपने बच्चों को हाथों से बनी हुई कुछ भी सजावटी सामान भी लगा सकती हैं, पेंटिंग भी लगा कर देखिए। यानी कि हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी सजावट कर रही हैं तो कुछ अपने हाथों से भी बनवा करके करिए, अपने हाथों से भी बना करके करिए, तो वहाँ पर एक खूबसूरती अलग ही चार चांद लगा देती है।
0: बिल्कुल। और जैसा कि हमने कहा कि अपनी कोई पुरानी तस्वीर, तो कई बार होता है मैजबिन कि बहुत पुराने दिनों की याद अगर हम देखते हैं, चाहे बच्चों की है या हमारे माता पिता की, या कहीं हम घूमने गए, उसको अगर अच्छे से फ्रेमिंग करके हमने लगा दिया तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और कई लोग सवाल भी करते हैं कि भाई ये कहाँ की तस्वीर है।
1: तो बहनों, अब हम अपने कार्यक्रम में सुनवाते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: बहनों आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। अब दे महजबीन
1: और शिल्पी को इजाजत। नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी।
3: अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियन गेम्स के अपडेट्स हमारे दिल्ली केंद्र से।

We will meet you next at 1:30 p.m. Stay tuned to Akashvani. Ishan.

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 12:35 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आंचलिक लोकगीतों का कार्यक्रम भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मगही लोकगीत। कलाकार हैं विंध्यवासिनी देवी और साथी।

इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में ही 12:45 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं खड़िया लोकगीत। कलाकार हैं विवियाना डुंगडुंग और साथी।